0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी टीजी एफएम 102.1 एलेनी।
4: 1, 2, 3
3: पॉप कॉर्नर। மொழிகளை கடந்த இசை அனுபவம்.

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं और पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित 3रे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। सरकार ने ईंधन निर्यात की समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्लू ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में 3री भाषा शुरू करने पर चिंता जताई, कहा इससे छात्रों पर तनाव बढ़ेगा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान की तैयारियां की गई हैं और व्यापक सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए गए हैं। अमरीका ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। म्यांमार में रोहिंग्यों के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ले जा रही 2 नौकाओं के बंगाल की खाड़ी में डूबने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है।

0: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है प्यारी सी मुस्कान है वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी बल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ सरकारी स्कूल से वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान है मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है। सच में आपका जीवन बहुत ज्यादा सरल है पर यही कहूंगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म है वो सर्वोपरि है और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूंगा मेरे गांव में पुराने समय से ही काफी फौजी हैं। छोटा सा गांव है पर फौज में काफी जो मात्रा में

0: जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं। पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं। मैम
1: वाह, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
0: जी मैम बिल्कुल, ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करूं।
1: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे, और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
0: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
1: जी, बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे, तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
0: जी
1: होता था आपके साथ?
0: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियां सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
1: वाह, क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
0: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
1: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
0: जी मैम,
1: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
0: मैं जैसे किससे कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
1: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी, आपके
0: जी
1: बाबा
0: जी
1: सब फौज में रहे, लेकिन
0: जी
1: आप चार भाई बहन,
0: जी
1: इनमें से कोई फौज में नहीं था।
0: जी
1: पिताजी खुद जो है, उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है। वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
0: जी
1: तो वो वहां मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए
0: फिर
1: देश के प्रति।
0: जी
1: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहां अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
0: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से दो या तीन, किसी के दो लड़के हैं, दो भी भर्ती उसी में सेना में, तीन है तीन भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
1: वाह, क्या
0: मेरे को
1: बात
0: देश
1: है,
0: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊंगा।
1: वाह, क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
0: जी
1: जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है, कहा जाता है कि जो जहां तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
0: जी
1: वापस लौट कर मत आना,
0: जी
1: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी, तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
0: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2000।

0: 5 को, तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम। तो 1 साल की ट्रेनिंग थी, 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
1: वाह क्या बात है। और जो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो ये जो 20 सालों का जो समय रहा है, जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है, महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
0: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर
1: जी
0: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं। और काफी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मेरी यादें काफी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
1: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20

0: जी
1: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं, और काफी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मेरी यादें काफी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
0: वाह, क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे किस सोच से देश प्रेम है ना,
1: जी मैम,
0: और हमेशा जहन में ये चलता रहता हो कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम,
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा, हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने, कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है। क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप

0: जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेटलिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेटलिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है,
1: जी
0: तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम, मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफर यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे जरूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं। बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते। और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में, यानी कि सहस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहां जुड़ने से पहले, वो साथी वो
1: जी
0: भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में है, कुछ खुद फौज में है,
1: जी
0: तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, और क्या ऐसा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम, ज्यादातर जो है हमारे गांव में से काफी लोग होते हैं। लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, सभी भर्ती हो लेते लास्ट में मैं हुआ था। तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए, और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए। जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
0: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
1: हाँ मैडम बिल्कुल, बोलते हैं
0: अच्छा कुछ
1: कि
0: ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहां हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा
1: नहीं
0: स्रोत।
1: मैम, ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते हैं। और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टॉप वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टॉप वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
0: सुखद रहा है
1: जी
0: मतलब।
1: जी
0: अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
1: जी मैम, मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था। तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
0: वहाँ तो जब आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था, और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी? और आप

0: आपकी नियुक्ति कब हुई?
1: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई।
0: जी ये तो आपने मुझे बताया।
1: जी
0: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
1: उनके बाद में हुई मैम, मेरी
0: अच्छा।
1: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफी और ज्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए, जिनको मैं
0: सिखाता था
1: वो लग गए, तो मेरे को और भी ज्यादा लगन हुई मैम। मैंने और ज्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी SSB बल में बढ़ते
0: तो
1: हुए।
0: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
1: जी
0: यानी कि मास्टर जी।
1: नहीं मैं नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता, जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है, अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहां दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफर बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में जरूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था जिसके बाद आप कि चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको मैम बताना चाहूंगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35 BN में। एक मैम हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSB को जो है कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो जिले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित साह DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं
0: जी। अच्छा, फिर

0: ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपके टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था उस वक्त? कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ? कैसा कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो आईजी जो आईपीएस आईजी संजय सर थे, वो और अपने जो है डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आईसी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ। उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का सीएचएम बना दिया जाए।
0: वाह,
1: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं सीएचएम था, एक नंबर टीम का सीएचएम वो था।
0: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूं? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
1: नहीं मैम, ये साझा तो
0: नहीं
1: ऐसी
0: किया
1: चीजें नहीं
0: जाता उस
1: किया
0: वक्त,
1: जाता,
0: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
1: मगर जो
0: जाता।
1: है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
0: मुश्किल
1: है।
0: होता है।
1: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
0: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
1: तो
0: करते हैं।
1: जी, जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना सात सात दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि
0: जी
1: अंदरूनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: अंदरूनी बातें हैं।
1: जी
0: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
1: जी
0: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
1: जी
0: हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
1: जी
0: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी मायोविस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी डीजी डिस मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
0: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
1: जी मैम,
0: आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए वो और कौन से सम्मान हैं
1: जी मैम,
0: जिनसे नवाजा गया आपको।
1: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, डीजी डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर डीजी डिस मिली है, गोल्डन डीजी डिस,

0: डीजी डिश 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह, क्या बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति, उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता। इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सहस्त्र सीमा बल में रहकर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
0: जी,
1: है ना,
0: मैम।
1: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
0: जी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र

0: पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्रपत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
1: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था, लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार।
0: जी,
1: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है।
1: जी,
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था,
1: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
0: जी,
1: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी।
1: जी,
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी,
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था, जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कि हमारे

0: जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
1: जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है। पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
0: जी।
1: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
0: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे।
2: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
0: अच्छा
2: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
0: डॉक्टर नमिता
1: जी,
0: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
1: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है।
2: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
1: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
2: जी,
1: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
0: अच्छा।
1: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
0: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
2: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
2: जी।
1: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
0: बिल्कुल।
1: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
2: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
0: जी।
2: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए लेकिन बहुत कम।
0: जी।
2: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
0: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
1: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
0: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
2: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
1: बिल्कुल।
2: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
2: जी।
1: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
0: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
1: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
2: जी
0: बिल्कुल।
2: और दिनेश जी

0: यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूंगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो
2: जी,
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना,
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: पिंटू जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ा।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक है बैठो, इससे पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा।

0: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
1: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
2: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
1: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
3: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
1: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
0: मास्टर जी।
1: हाँ हाँ, बोलो।
0: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
4: जी मास्टर।
1: लिखो फिर, सब लिखो।
5: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
6: दीदी।
7: बोलो मालती।
6: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
7: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
6: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
7: ठीक।
6: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
7: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
6: जी।
7: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
6: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
7: हाँ।
5: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
8: नमस्ते दीदी।
9: नमस्ते
8: दीदी।
9: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
7: दीदी ये,
9: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
3: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
9: अच्छा।
3: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
9: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
7: गुलाब।
9: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
8: दीदी मैं बताऊँ?
9: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
7: गुलाब। गेंदा।
9: हाँ।
7: चमेली। और
9: हाँ,
7: चमेली।
9: चमेली।
7: सूरजमुखी।
9: सूरजमुखी, शाबाश।
5: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
9: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
5: जी।
9: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे।

0: उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन-कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
1: जी जी।
0: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
1: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
0: जी, कभी-कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूं। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा।
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल

यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां 1 सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह।

शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ, लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा

0: और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथ पुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।